FM 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 3। तदनुसार 24 जून ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गाय कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं हरिओम शरण एवं साथियों के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे सतीश कुमार शर्मा। सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चैबासा का। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा।

8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी की महक। 9 बजे विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद 3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। चार बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। संध्या 5 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। शाम 5:02 पर आकाशवाणी चयबासा से प्रसारित शेष कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही गायिका के गाए चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 4:02 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे मनोरमा कार्यक्रम। 7 बजे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं सतीश कुमार शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। गायक कलाकार थे सतीश कुमार शर्मा। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जोहर चेबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हम राज फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर के स्वर में।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं मेरी जंग फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: मोर नाम मंगलोरा एको गांव बारीगरा आड़की थाना तो जंगल

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मर्द फिल्म का ये गीत, इस जानकी, शब्बीर कुमार और अमिताभ बच्चन के स्वरों में।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, जोहार चयबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और

0: साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में

0: देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है, इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए कि वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Anuja Kumar. The headlines. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
7: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative, disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
6: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
8: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
6: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with the UAE in recent several years has seen a major upswing.
9: Our relationship with United Arab Emirates several years has actually seen a major upswing. In that upswing, the defense partnership also plays an important role. And that also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE.
6: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया केंद्र सरकार का आभार। राज्य में SIR के तहत BLO और सुपरवाइजरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। डिजिटल प्रक्रिया और इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की दी गई जानकारी। देवघर की मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन ने 1 करोड़ की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्र के समग्र विकास को बताया प्राथमिकता। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टेलर्स को 7 विकेट से हराकर जीता पहला खिताब। कप्तान कुमार कुशाग्र बने प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिन के 11 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी उपस्थित रहेंगे। इन चयनित अभ्यर्थियों में 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह सम्मान गुरुजी के कड़े जन संघर्ष, सामाजिक न्याय और अलग राज्य के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सच्चा राष्ट्रीय आदर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे झारखंड की जनजातीय अस्मिता के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सभी झारखंड वासियों से इस गौरवशाली क्षण का जश्न मनाने की अपील की है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे गुरुजी के संघर्षों, सिद्धांतों और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: दिशम गुरु हमारे झारखंड के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है जमीनी स्तर पर उतरकर, जिस तरह से महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झारखंड हमारा अलग राज्य बना, आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि गुरु जी को जो सम्मान मिला उसे पूरा झारखंड सेलिब्रेट करे।
0: राज्य के बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाया कि इस पूरे घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच समितियों और SIT का खेल रचकर बड़ी मछलियों और सफेद पोषों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष, न्यायिक और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग दोहराई है।
2: झारखंड में कई जिलों में, हजारीबाग में, बोकारो में, रांची में, चाईबासा में, पुलिस विभाग में ट्रेजरी से पैसे निकाले गए, करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हुई। जैसे ये घोटाला सामने आया, राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम इसकी जांच करेंगे कि इस घोटाले में राज्य सरकार कुछ सफेदपोश चेहरों को, जो राज्य में बड़ी ताकत है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है।
0: झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिला प्रशासन अलर्ट है। रांची में सदर SDM वरुण रंजन की अध्यक्षता में BLO और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे।
3: BLO एंड BLO सुपरवाइजर्स में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, इन्यूमरेशन फेज और उसके आगे के जो फेजेस से संबंधित काम है उनके बारे में बताया, कैसे उन्हें फॉर्म कलेक्ट करना है, कैसे इनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे उनको फॉर्म डिजिटाइज करना है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, वो इनोवेशन फेज में वो पार्ट नहीं आता है, क्योंकि इनोवेशन फेज में हमें बस इनोवेशन फॉर्म ही कलेक्ट करना है।
0: उधर साहेबगंज के विभिन्न प्रखंडों में BLO और सुपरवाइजरों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने अपने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देते हुए 1,07,00,000 रुपए की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। पथल चपटी स्थित आवासीय कार्यालय से शुरू की गई इन विधायक मद की योजनाओं के तहत विभिन्न प्रखंडों में सड़क, नाली, जल मीनार और कीर्तन मंडली भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। रांची के कोकर खोरहा टोली से 47 दिनों से लापता 22 महीने की मासूम आदिति पांडे का सुराग न मिलने पर कल उसके माता पिता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पुलिस सुरक्षा कारणों से उन्हें रोककर गोंदा थाना पहुंचाया और सचिवालय में उनका आवेदन मुख्यमंत्री के एसओडी को प्राप्त कराया गया। डीएसपी संजीव कुमार बिस्ट्रा ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है।
6: उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया वो एसडी साहब को रिसीव कराया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे की बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की जाए। अब तक हम लोग को ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। टीम भी ऐसे नहीं है कि बैठी हुई है, अपने स्तर से वो परिवार वालों को लग रहा है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए। जो भी इनकी डिमांड हो रही है सारी चीज को पूरी की जा रही है।
0: रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ आज राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि पलामू और डालीगंज जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टेलर्स को 7 विकेट से हराकर झारखंड टी20 क्रिकेट लीग का पहला खिताब जीत लिया है। कप्तान कुमार कुशाग्र प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं जेसीए स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि एक गेट खुला होने और धीमी सुरक्षा जांच से दर्शकों का दबाव बढ़ा।
7: एक ही गेट वो आमजनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी, जिसकी वजह से अचानक से भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है सो पब्लिक का प्रेशर भी काफी बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेसीए स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग के फाइनल में प्रवेश द्वार के बाहर भगदड़ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अंदर चौके छक्के, बाहर लात घुसे, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली तो तोड़फोड़, भगदड़, 22 घायल। हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड की दोनों सॉल्वर चंचल व पूनम की खंगाली जा रही है कुंडली। प्रभास खबर के अनुसार, अजमेर रांची के बीच जल्द दौड़ेगी अमृत भारत 3.0 ट्रेन। दैनिक जागरण के शब्द है, जेल में महिला के यौन शोषण मामले की न्यायिक जांच, रिपोर्ट कोर्ट को पेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया केंद्र सरकार का आभार। राज्य में एसआईआर के तहत बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। डिजिटल प्रक्रिया और इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की दी गई जानकारी। देवघर के मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन ने 1 करोड़ की लागत मदद से 41 जनकल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्र के समग्र विकास को बताया प्राथमिकता। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टीलर्स को 7 विकेट से हराकर जीता पहला

खिताब कप्तान कुमार कुशाग्र बने प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं बांग्ला गीत। कलाकार हैं SD Barman।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

कर डाल जनो भंग ना, अमर फूल जनो भंग ना।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गीत, गाय कलाकार थे एचटी बर्मन। इसके साथ ही माटी की महक का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आज हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस आज के दिन यानी कि प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आज महिलाएं राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, शिक्षा और कूटनीति सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। श्रोताओं, राजनयिक किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का कार्य करते हैं। महिला राजनयिक भी इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल के माध्यम से विश्व शांति, सहयोग और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वे विभिन्न देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने, विवादों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस महिलाओं को कूटनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ यह समाज को यह संदेश देता है कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी बनती है। यह दिवस लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। श्रोताओं, महिलाओं ने कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई देशों में अभी भी उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, इसलिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने और उनके नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनके योगदान को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस हमें एक ऐसे समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है जहां महिलाएं और पुरुष समान रूप से राष्ट्र और विश्व के विकास में योगदान दे सके। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विश्व में शांति, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। श्रोताओं, अभी हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस के बारे में।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलोरा एक गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें

0: కూడా పట్టణ తుమ్ముకుంట కూడా అయాహంలో కొద్దమని కూడా పట్టణ కితమై కూడా నేను బాగా తొక్కిం సిఆర్పి కులో పోలీస్ కులో ఎన్ని లడై చలా అవుతాను దుర్గం గుయ్యంటో జయ తేరే కక్క గుంగో ఉండి కోకో కక్క నేను
1: అలింగ్ ముని సురం తేత అపిల్ల తన లింగ్స్ జా హురా రే మినై రో జితా హురా రే మినై రో తో బుగిం హురా తే సెసెన్ కా హై ఉవాగే బిటా హురాన్ కా అలి అయా ను తుం తేన అపిల్ల తన
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: विविध कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं युवाओं के जीवन में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व विषय पर आधारित यह भेंटवार्ता।
4: आइए जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू मैम। मेरा नाम सुमित कुमार साहू है। मैं पिछले 10 वर्षों से कंप्यूटर के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ।
4: जी जी सुमित जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर एक विद्यार्थी के जीवन में, जो हमारा युवा है उसके जीवन में, उसका क्या महत्व है?
5: जी, जैसा कि युवा देश के भविष्य होते हैं और जिस अनुसार से अभी समय बदल रहा है और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटर में, हर कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग होता है
4: जी,
5: तो कंप्यूटर बहुत ही अनिवार्य है। उसका बेसिक से लेकर एडवांस, अब युवा किस क्षेत्र में जाते हैं उसके हिसाब से उनको कोर्स चूज करना होता है, पसंद करना होता है क्या करना है।
4: तो अभी आपने बताया कि एक जो भी इंसान है, अभी मनुष्य है, युवा है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को कंप्यूटर सीखना अभी जरूरी है। लेकिन ये जब बात युवाओं की आए तो ये बात और भी ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि उन्हें कंप्यूटर आना ही चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का योगदान है। तो अब आप हमें ये भी बताइए कि कंप्यूटर सीखने से क्या क्या फ़ायदे हैं?
5: कंप्यूटर सीखने पे आप अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के कोर्स होते हैं। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आप कंप्यूटर सीख लेते हैं उस फील्ड के अनुसार, उस कोर्स जिस फील्ड में आप अपना फ्यूचर निर्धारित करना चाहते हैं वो कोर्स कर लेते हैं, तो आप में खुद में आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम उस फील्ड में काम करने के लिए तैयार हैं।
4: जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया हमारे युवाओं को कि कंप्यूटर से आप जान पाएंगे कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके अलावा क्या ये हमारी पढ़ाई में भी मदद करता है?
5: जी बिल्कुल। आज जैसे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, स्कूल बहुत एडवांस हो गए, हर टेक्निक्स में पढ़ाई होता है
4: जी।
5: बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है पर्यावरण से लेकर के जैसा को सब्जेक्ट होता
4: जी
5: है
4: जी।
5: तो हर जानकारी कंप्यूटर से हासिल करके उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बहुत सारा चीज़ों को कंप्यूटर सीख करके आप अपना पढ़ाई में भी निपुणता हासिल कर सकते हैं
4: जी सर। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर शिक्षा के क्या क्या उपयोग हैं और हम कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं।
5: देखिए, आज आप किसी भी फील्ड में

है। अगर आप कंप्यूटर में निपुण हैं तो आप स्मार्टफोन को आसानी से हैंडल कर लेंगे, और कंप्यूटर स्मार्टफोन में भी आप ठीक उसी तरीके से काम कर पाएंगे जैसे कंप्यूटर से करते हैं। मिनी कंप्यूटर आप उसको बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये बताइए कि आजकल

0: क्षेत्र में कोई गाइडलाइन नहीं मिलता है, कोई बताने वाले नहीं रहते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे चैनल्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप में किस में रुचि है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं,
1: जी
0: तो भविष्य निर्धारण के लिए भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग होता है।
1: की होता है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो आपको कमी होती है, सेवाएं आपको जो नहीं मिल पाती है आपके क्षेत्र में, वो आप मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे लैपटॉप के जरिए भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी मैम बिल्कुल।
1: जी, तो इसके अलावा एक और चीज़ है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रसार देखा जा रहा है, हमारे जीवन में ऑनलाइन काफ़ी घुस गया है अंदर अंदर तक। तो ये बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए कंप्यूटर शिक्षा कितनी ज़रूरी हो जाती है?
0: जी मैं ऑनलाइन जैसा कि हर एक फील्ड में यदि आप जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, तो आज सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होता है। आप घर बैठे ही आप यहाँ से कहीं विदेश का भी इंटरव्यू फेस कर सकते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो वो ऑनलाइन बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके लिए आप में यदि आप शुरू से कंप्यूटर सीखे रहेंगे तो आप में आत्मविश्वास आएगा, तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: सर, एक और बात हम आपको पूछना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले हम एक बहुत विषम परिस्थिति से गुजरे हैं, वो है कोरोना काल की। और कोरोना काल जब आया था तो लोग घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो क्या हम मान सकते हैं कि ये कंप्यूटर शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया?
0: जी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा, बल्कि मैं जहाँ शिक्षक हूँ वहाँ पे भी कोरोना के काल के बाद से युवा इस तरीके से मैंने कंप्यूटर सीखने के लिए आए, सबको एहसास हो गया कि नहीं कंप्यूटर करने से बहुत सारा चीज़ में आसान हो जाता, क्योंकि उस समय हर फील्ड में वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन कैसे करे किसी को किसी तरह का जानकारी नहीं
1: जानकारी
0: था,
1: नहीं थी।
0: तो वो कंप्यूटर यदि सीख लेते तो उस समय जो नहीं सीखे उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता, और
1: जी
0: ये उस समय उस विषम परिस्थिति में ये चीज़ क्लियर हो गया था कि कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य
1: जी
0: है।
1: क्योंकि उस समय हम सभी ने ये महसूस किया कि हम घर बैठे बिना भीड़ भाड़ कहीं भी जमा किए हुए घर बैठे हम तक हर जानकारी पहुंच रही थी, और हम लोगों को उससे मदद भी पहुंचा पा रहे थे। सुमित जी, अब हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर सीखने के बाद आपके कैरियर के लिए कौन-कौन से रास्ते खुल जाते हैं?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है,
1: जी
0: आप करियर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना होता है,
1: जी
0: आप अकाउंटेंट के रूप में काम करना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, आप बिजनेस मैन हैं, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी,
1: जी
0: तो लगभग हर एक फील्ड में आप एक प्रोफेशनल और स्किल्ड नॉलेज आपके पास होगा, तो आप हर एक फील्ड के लिए तैयार रहेंगे।
1: जी
0: आज आप जितना भी वैकेंसी आप देखते हैं सभी में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और टाइपिंग मांगा जाता है।
1: जी
0: यदि आप उस फील्ड में आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानकारी होगा, तो कंप्यूटर लगभग हर एक फील्ड के लिए अनिवार्य
1: जी
0: हो जाता है। यदि आप अपना भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना ही चाहिए।
1: यानी कि बेहतर भविष्य के लिए कंप्यूटर शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा
0: जी
1: जरूरी है। तो सुमित जी, अब ये बताइए कि अगर हम जब भी कंप्यूटर सीखने कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में ये असमंजस्य की स्थिति रहती है, या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है हमारे अंदर कि हम क्या कोर्स करें, किस कोर्स को करने से हम एक अच्छी लाइन पकड़ सकते हैं या वो हमारे जीवन में लाभदायक होगा, वो हमारे युवाओं को आप बताइए।
0: सबसे पहले तो एमएस ऑफिस बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
1: जी
0: ये एक कंप्यूटर के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा आपका फ्यूचर के लिए,
1: अच्छा
0: इसका नॉलेज जो है अनिवार्य हो जाता है।
1: जी
0: आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप लोअर लेवल से लेकर के आप चाहे एम्प्लॉय हैं या आपके अंडर कई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एमएस ऑफिस ही काम करने के लिए सबसे आवश्यक कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो
1: अच्छा
0: एमएस ऑफिस का अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए,
1: जी
0: टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद यदि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस सीखना
1: जी
0: है, आप अकाउंटेंट के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे अकाउंट के कोर्स सब हैं, टेली वगैरह, ये सब आपको यहाँ लोकल लेवल और फ्यूचर में गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब हर फील्ड में ये काम आता है। तो एमएस ऑफिस को हम लोग कंप्यूटर का ब्रह्मास्त्र के रूप में बोलते हैं
1: जी
0: विद्यार्थी के फ्यूचर के लिए।
1: जी जी जी ये तो आपने ये बताया कि हमें क्या कोर्स करनी चाहिए। तो इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो हमें आप बताइए कि कंप्यूटर जो हम सीखते हैं उसमें क्या सिर्फ हम एमएस ऑफिस जो आप बता रहे थे वो, उसके अलावा भी कुछ और है जिसमें हम कुछ नए प्रयोग कर सके कंप्यूटर के ऊपर, सीख सके हम अपने कैरियर में अपना सकें उसको?
0: जी ऐसा बहुत सारा कोर्स है, जैसा कि बताया यदि आप बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना
1: जी
0: चाहते
1: जी
0: हैं, तो आप पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा ये सीख सकते
1: जी
0: हैं, आप क्रिएटिव माइंड है आपका, तो

0: फोटोग्राफी वगैरह एडिटिंग वगैरह का कोर्स होता है, DTP, उसको कर
1: जी,
0: सकते हैं। तो इस तरीके से
1: यानी कि
0: बहुत
1: कंप्यूटर से ही हम मिक्सिंग, एडिटिंग, संगीत के क्षेत्र में, कला के
0: जी
1: क्षेत्र
0: जी
1: में, हर क्षेत्र में हम
0: जी
1: इसका उपयोग कर
0: जी
1: सकते
0: जैसे
1: हैं।
0: कि मोबाइल आया है तो अभी सबको अपने आप को रील्स वगैरह
1: जी
0: चलता है, तो
1: हाँ
0: उसमें भी
1: हाँ
0: वीडियो एडिटिंग वगैरह के
1: बिल्कुल
0: लिए
1: बिल्कुल
0: चाहिए होता है।
1: जी
0: तो ये छोटा से बड़ा से हर चीज़ में आपको क्रिएटिव माइंड होने पे ये बहुत अनिवार्य हो जाता है।
1: एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, वो है कि जो एक एनिमेटेड मूवी आजकल जो निकल रही है, बहुत ट्रेंडिंग है वो एनिमेशन वगैरह, तो क्या हम कंप्यूटर के द्वारा ही उसको कर पाते हैं?
0: जी बिल्कुल मैम, उसके लिए स्पेशल कोर्स भी होता है, आप पर्सनली लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं इसको। बहुत सारे ऐप आते हैं तो आप उसमें सीख सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे।
1: जी
0: और
1: जी
0: पर्सनली इसका प्रोफेशनल कोर्स होता है, डिग्री कोर्स भी होता है
1: जी
0: इसका, मास्टर होता है एनिमेशन में, तो इसका फ्यूचर भी है आगे।
1: जी तो हम ये कह सकते हैं सुमित जी कि कैरियर की उन्नति और व्यक्तिगत विकास पर भी कंप्यूटर कौशल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है,
0: काफी ज्यादा
1: और इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा ज़रूरी है।
0: जी ऐसा है।
1: तो सुमित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे युवाओं को दी हैं कि हमें कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए। अब एक और छोटी सी बात हम जानना चाहेंगे, बच्चे आजकल मोबाइल का उपयोग गेम खेलने के लिए भी काफ़ी करते हैं, और मोबाइल के अलावा आप कंप्यूटर पे भी देखते हैं कि बच्चे गेम खेलते हैं, तो क्या कंप्यूटर हमेशा अच्छा ही आपको लाभ देता है कि उसके बुरे पहलू भी है?
0: नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे तो बहुत बड़ा डिस्कशन होना चाहिए, नेशनल लेवल पे इस पे डिस्कशन होना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं स्क्रीन टाइमिंग कम करना चाहिए।
1: जी
0: तो ये बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ये उसका आपका फ्यूचर है।
1: जी
0: आपके पेरेंट घर से निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन दिन भर खट रहे हैं,
1: जी
0: तो आपका भी इस समय ड्यूटी है कि आप उसको ईमानदारी से पढ़े करें, आप देख रहे हैं, आप शिक्षित ऐसा चीज़ों को देखें जो आपका भविष्य उज्जवल बनाए।
1: जी
0: आप इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं लेकिन आप रील ही देख रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे, आप
1: जी
0: गेम ही खेल रहे हैं, तो
1: जी
0: वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक होगा।
1: बिल्कुल
0: तो इस चीज़ को हम नहीं बोलते, सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके आदी हो जाना, इसके लिए पेरेंट्स भी कितना बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो
1: जी
0: खुद से अपना भविष्य निर्धारित करना, जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण भविष्य आ रहा है,
1: जी
0: हर
1: जी
0: चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहा
1: जी
0: है, उस कारणवश कहीं ना कहीं बेरोजगारी में
1: हाँ
0: बढ़ोतरी होगी। तो
1: जी
0: इस तरीके से आप अभी से इंटरटेनमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट।
1: जी
0: आप इतना देरी इंटरटेनमेंट के चीज़ों को देखें लेकिन आप अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ों को कंप्यूटर में सर्च करें। यूट्यूब में सभी तरह के वीडियो नॉलेज के लिए दिए हुए हैं,
1: जी
0: आप सर्च कर सकते हैं, वो आपका सुनिश्चित रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है।
1: जी तो मतलब मनोरंजन के साथ साथ इसके हम बोल सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से अपनाते हैं। तो अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे जो युवा मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कंप्यूटर को वो अपने जीवन में कैसे अपनाए, और उनसे जुड़ी वो क्या जानकारियां अपने जीवन में उसको अपनाए कि उनको आगे जाके अपने कैरियर में लाभ मिले?
0: जी, जैसा कि युवा हैं, यदि आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तभी से ही कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
1: जी
0: और जैसे कि मोबाइल आपके हमेशा हाथ में होता है तो मोबाइल को लेकर के आप सही चीज़ों को सर्च करें, अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए आप सर्च करें कि चीज़ों कैसे होंगी, क्या आप भविष्य में बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा,
1: जी
0: ये बहुत सारा सुविधा होता है आपके पास। आप आम जनता हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना पावर है, आप DC SP से जा करके अपना भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं उससे, क्या है कि आप हम कैसे बनेंगे IAS, हम कैसे बनेंगे IPS। तो
1: अच्छा,
0: मोबाइल में उन चीज़ों को सर्च कीजिए।
1: मतलब कैरियर से जुड़ी हर जानकारी हमें
0: जी
1: यहाँ पे प्राप्त होती है।
0: जी जी
1: जी
0: जी ऐसा है कि क्या होता है कि आजकल मतलब इतना रील्स वगैरह का ट्रेंड चला हुआ है, युवाओं को उससे अच्छी शिक्षा लेनी
1: तो हम ये
0: चाहिए।
1: कह सकते हैं कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए।
0: जी जी
1: कंप्यूटर से हम एक और काम
0: हाँ
1: भी सर हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, पहले हमें कोई भी अगर फॉर्म भरना होता था तो हमें बहुत घंटे तक लाइन में लगना पड़ता था फॉर्म लेने के लिए, फिर भरने के लिए, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई आपसे तो फिर आपको उसको सुधार करने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ता था करेक्शन करवाने के लिए, तो आजकल देखा जाता है कि ये आपको ऑनलाइन भी हो जाता है,
0: जी
1: तो उसके लिए आप कितना बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन
0: जी
1: के
0: जैसा
1: थ्रू?
0: कि बताया मैम, MS Office वो ब्रह्मास्त्र है
1: जी
0: कंप्यूटर के नॉलेज के लिए। तो आप MS Office और इंटरनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं तो आप घर बैठे अपने से ही कर सकते हैं, उसमें आपको किसी तीसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो एक सिंपल फॉर्म रहता है जिसको आपको आपका खुद का जानकारी जो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा वो भरना होता है, आपको स्कैन करना होता है, मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो जाते हैं, अपलोड करना होता है, तो वो चीज़ें आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से ही कर सकते हैं। और खुद से करेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि आपने सही सही क्या चीज़ भरा है क्या नहीं भरा है, तो उससे त्रुटि होने की भी संभावना कम हो जाएगी।
1: तो अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या हम उसको करेक्शन कर पाते हैं ऑनलाइन अपने आप?
0: जी, बहुत सारे साइट में ये सुविधा दिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल तो बहुत सारा टेस्ट एक ही बार में हो जाता है, बहुत गवर्नमेंट का जो SSC का है उसमें एक बार में आप फॉर्म भरते हैं, तो वो आपको आने वाले बहुत समय तक वो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, एक ही इन्फॉर्मेशन से आपका आगे बढ़ते रहता है। तो गवर्नमेंट इस सुविधा को देती है कि आप करेक्शन कर सकते हैं।
1: जी, तो सुमित जी, आपसे आज हमने इस कार्यक्रम में बातें की और आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे युवा दोस्तों को दी है कि कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ करके वो क्या क्या लाभ इसके ले सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: युवाओं के जीवन में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे यह भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे सुमित कुमार साहब और उनसे बातें कर रही थी संगीता शर्मा। तो श्रोताओं, इसी भेंट वार्ता के साथ ही आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं 9:30 हो रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

रसरंजन कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म में वीरू दादा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है।

0: रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: रस रंजन कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं हीरो फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के युगल स्वर में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।

0: जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया? अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red, and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red, and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था

0: राम कथा और हिंदी में लिखा है
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध

0: बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
0: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
0: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
0: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है

0: ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास, ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनके मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 10:30 हुए हैं और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि हौसले बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं रहती। इन बातों के साथ अस्मिता है आपके साथ और मेरे साथ है
1: और आपके साथ है सुनीता। आप सभी को हमारा नमस्कार जोहार।
0: तो क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ करें।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में हम, जैसा कि अस्मिता जानते हैं कि बहुत सारी बातें हम अपने श्रोताओं से करते हैं, और सबसे पहले जो हम बातें करते हैं ना, उनसे हम कुछ अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार हमसे शेयर करते हैं। तो आज क्या ऐसी बातें हैं जो हम अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे?
1: तो आज का सुविचार है कि जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें कभी खुशी के पल आते हैं तो कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटी कोशिश हमें अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाती है।
0: हमें याद रखना चाहिए कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो निराश होने के बजाय उससे सीख लेने का प्रयास करें। जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे श्रोताओं, इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। हौसलों से उड़ान होती है, आप सभी जानते हैं। और फिलहाल एक गीत आपके लिए।

0: जोहरा ची कार्यक्रम में बात कर लेते हैं अस्मिता मौसम की, हाँ। क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव ना बहुत देखने को मिल रहा है। आज सुबह में जब मैं आ रही थी तो बिल्कुल बादल था और हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी बहुत
1: काफी धूप है,
0: धूप है, गर्मी है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है, जैसे की सूचना आई है कि आज भी बादल छाएंगे, बारिश हो सकती है और आने वाले एक दो दिनों में बारिश होगी। मॉनसून एक बार फिर थोड़ा सक्रिय हो रहा है, तो देखते हैं हमारे यहाँ बारिश अब कब से शुरू होती है और मौसम कब से बहुत सुहाना हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी जो मौसम है उतना बुरा भी नहीं है, गर्मी कम है,
1: थोड़ी
0: तो
1: कम
0: ये
1: है।
0: मौसम का आनंद उठाइए, अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, लेकिन मौसम बदल रहा है इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, ऐसे में ही बीमारियां पनपती है। तो मौसम का मजा लीजिए इस खूबसूरत से गीत के साथ, आगे बातें करेंगे और भी बहुत सारी।

एक बार फिर से हाजिर हैं आपका कार्यक्रम जोहार रांची लेकर। तो चलिए अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं। 24 जून को विश्व स्तर पर मुख्य रूप से कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को वैश्विक कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है। और अब इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि आज का इतिहास क्या है। 1963 की बात करें तो डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की। 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मात्र 42 रन पर ऑल आउट हो गई थी। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का आज तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अब बातें उनकी जिन्होंने इस दुनिया में कदम रखा। भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 1937 में हुआ था। और 1937 की बात करें तो अनीता देसाई, जो कि अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन यानी कि 24 जून को हुआ था। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म भी 1847 में हुआ था। और बात करें 1885 की तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरी चापेकर का जन्म भी 1869 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म 1863 में हुआ था।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। दोस्तों, अब बातें उनकी जिन्होंने आज के दिन ही इस दुनिया को अलविदा कहा। भारतीय लेखक और पत्रकार अवनाथम सीतारमन का निधन आज के दिन यानी कि 2001 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन चंद भारतीय सेनाओं में से एक थे जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और वो थे दरबान सिंह नेगी। उनका भी निधन आज के दिन यानी कि 1950 में हुआ था। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता तथा हिंदी पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धा राम शर्मा का निधन भी आज के दिन यानी कि 1881 में हुआ था। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन 1564 ईस्वी में हुआ था। गुणवाना साम्राज्य की महान वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। उन्होंने 24 जून 1564 को मुगल सेनापति आसफ खान से युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जब आसफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया तो रानी ने वीरतापूर्वक कई मुगल हमलों पर विफल कर दिया। और बलिदान का प्रसंग की बात करें तो आखिरी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने पर जब उनकी हार निश्चित हो गई तब उन्होंने शत्रु के हाथों अपमानित होने के बजाय अपनी कटार स्वयं अपने सीने में घोप कर वीरगति को प्राप्त करना उचित समझा। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल वर्तमान मध्य प्रदेश में जबलपुर वर्गी रोड पर नरई नाला के पास स्थित है। उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की स्मृति में भारत सरकार द्वारा 24 जून 1988 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक श्री सोम गुरु सीबी सोरेन को और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा समेत 66 हस्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। दिसुम गुरु को शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बाबा को अलंकृत किया जाना उनके आजीवन संघर्ष, त्याग, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को दिया गया सम्मान है। और दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड को जल्द मिलेगी अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, झारखंड को जल्द ही पहली अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन की सौगात मिल सकती है। रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य को यह ट्रेन मिलने जा रही है। अजमेर से रांची के बीच वाया जयपुर होकर ट्रेन संचालित किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय रेलवे की द्वारा की जाएगी।

दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी अपने काम में और पढ़ाई, परिवार और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ यानी अपनी सेहत का ध्यान रखना कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन सच तो यह है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन की सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती है। सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़रूरी है संतुलित भोजन। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें, दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। अक्सर हम स्वाद के चक्कर में जंक फूड और तली भुनी चीज़ों का अधिक सेवन कर लेते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है

इसलिए कोशिश करें कि घर का बना ताज़ा भोजन ही खाएं। इसके साथ ही पानी का पर्याप्त सेवन करें। कई लोग दिन भर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भी भूल जाते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद ही जरूरी है। पानी शरीर के लिए विषैली तत्वों को बाहर निकालता है और हमें तरोताज़ा बनाए रखता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो हम सफर अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहेली फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। शब्द रचना गुलजार के हैं, संगीतबद्ध किया है MM करीम ने, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

जब चलूं तो छन छन छन के अंगना रे, जब चूड़िया छनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जावे सजना।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लवई से गुलाब दास मणिकपुरी, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, और इन्होंने सुनना चाहा है मुस्कान फिल्म से ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है निखिल विनय ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुछ तो है से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। और इस गीत एक को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चैतेक बीरक और मीका बीरक।

इसी गीत के साथ आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से अस्मिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गृह लक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और आज मेरे साथ है खुशबू। और खुशबू कैसी हो तुम?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ निधि। नमस्कार सखियों, और स्वागत है आप सभी का अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज हम अपनी ही सखियों के बारे में चर्चा करेंगे निधि, कि किस तरह हमारी बहनें सबको जोड़े रखने का काम करती है, यानी जोड़ने का काम करती है।
0: बहुत अच्छी बात तुमने कही। तो खुशबू, ये तो हम जानते हैं और हम हमेशा देखते भी आए हैं कि महिलाएं ही होती हैं जो अपनी समझदारी और धैर्य से सभी रिश्तों को संभाल कर रखती हैं, चाहे वो विवाह के पहले हो या जब अपने माता पिता के घर में होती हैं, या बाद में जब वे अपने माता पिता के घर को छोड़कर एक नए परिवार को अपनाती हैं तब भी। और स्त्रियां दो परिवारों में रिश्तों को जोड़कर रख सकती हैं। इनकी यही बात हमारे भारतीय संस्कृति और परिवार की नींव होती है।
1: बिल्कुल सही कहा निधि तुमने। और इसका कारण ये भी है कि इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की अधिक क्षमता होती है, क्योंकि महिलाएं है ना बहुत संवेदनशील होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे कभी कभी तो दूसरों की बातों को बिना कहे भी समझ जाती है, खासकर अपने परिवार वालों की और अपने बच्चों की आवश्यकताओं को तो भली भांति ही जानती है। तभी तो वे सभी को एक धागे में बांध कर रखती हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं पर संतुलन बनाए रखती हैं। भले उनकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हें खिलखिलाते मुस्कुराते हुए मिलेंगी, ताकि परिवार के सदस्य है ना को कभी परेशान ना हो।
0: हाँ, और यही बात उनकी जो ताकत है, शक्ति है, उसको दर्शाती है। तो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने के साथ साथ वे घर के सदस्यों की जो जरूरतें होती हैं उनको भी प्राथमिकता देती हैं। कई बार अपनी जरूरतों या पसंद को बाद में रखना, उसे उतनी प्राथमिकता ना देना, और ये सभी जो गुण है ना हमारी बहनों के अंदर, वही जो है वो धैर्य का काम करती हैं और धैर्य से काम लेने में उनकी मदद भी करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा निधि तुमने। वैसे हम महिलाएं होती ही बहुत धैर्यवान हैं, और हर परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें धैर्य रखती हैं। और यही कारण है कि जीवन के सभी उतार चढ़ाव से गुजरते हुए रिश्तों को हम जोड़ कर रख पाती हैं, सहेज कर रख पाती हैं। निधि तुमने देखा होगी बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखती हैं, और वो परिवार है ना हमेशा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा खुशहाल ही दिखेगा तुम्हें।

0: खासकर जो परिवार में जो बड़े उम्र की महिलाएं होती हैं, जैसे कि तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अहम होती है, उनका योगदान भी जो होता है ना खुशबू बहुत अहम होता है, क्योंकि उनके हाथों में ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबको एक साथ कैसे जोड़कर रखें, क्योंकि मनमुटाव जो है या छोटी छोटी बातों पे कभी कुछ नाराजगी हो जाती है या कभी हम दूसरों की भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते, तो इसमें क्या होता है कि आपसी मतभेद हो जाता है कभी कभी, तो एक ऐसी महिला होनी चाहिए घर में जो सबको समझा बुझाकर और सबको प्यार से रहना सिखलाए। और महिलाएं सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी वे इस संस्कार की नींव डालती हैं, है ना?
1: बिल्कुल। और आज के आधुनिक युग में रिश्तों को संभालना महिलाओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया होगा।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: क्योंकि घर से बाहर भी उनकी भूमिका होती है जिसकी वजह से उन्हें अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और ऐसे समय में यदि परिवार के सदस्यों का साथ मिलता है तो परिवार बहुत अच्छी तरह से चलता है। हालांकि महिलाओं पर ही ये जिम्मेदारी होती है कि वे परिवार को सहेजे, लेकिन परिवार के सदस्यों का सहयोग भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ, और चुनौतीपूर्ण तो है ही स्थिति, क्योंकि दोहरी भूमिका में आ गई हैं हमारी बहनें आजकल। पहले की बात अगर हम करें तो वे घर की ही जिम्मेदारी निभाती थी, लेकिन आज बाहर की भी जिम्मेदारी उन्हें निभानी है, और ऐसे में अगर वे रिश्तों को भी सहेज कर रखती हैं तो ये वाकई सराहनीय बात है। और घर परिवार में ऐसे अनेक अवसर आते रहते हैं, जैसे तुम देखो शादी ब्याह का अवसर है, उत्सव है या किसी का जन्मदिन हो, बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिसका निमंत्रण हमें मिलता है और उस वक्त हमारे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी जो बहनें हैं वो इतनी व्यस्त रहती हैं, दोहरी भूमिका भी निभाती हैं, लेकिन फिर भी हर एक अवसर के लिए, छोटे या बड़े अवसर के लिए, पूजा पाठ के लिए और सब लोगों के लिए वक्त निकालती हैं, तभी तो वे रिश्तों को संभाल कर रख पाती हैं।
1: बिल्कुल। और वे इसमें सामंजस्य बिठाती हैं, संतुलन बिठाती हैं, वो घर बाहर दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए घर और बाहर दोनों ही रिश्तों को संभालती हैं, तभी वे सबकी आशाओं को पूरा करती हैं और अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को भी इसकी शिक्षा देती हैं, ताकि वे भी इस परंपरा को आगे बनाए रख सके।
0: ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है खुशबू, क्योंकि ये जो बात है ना रिश्तों को सहेजने की, वो सिर्फ ये गुण जो है वो अपने तक ही सीमित नहीं रखती, आने वाली पीढ़ी को भी उसे देना, उस परंपरा को सिखाना, खास करके अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को वो सिखाती हैं और इसकी एक मजबूत नींव रखती हैं। और सच हम कहते हैं ना कि अगर स्त्रियों में इतना धैर्य और त्याग ना हो तो रिश्ते बिखरने लगेंगे, और
1: क्योंकि हम स्त्रियों के इस योगदान के बिना संस्कारों की कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल। और एक मजबूत परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब महिलाओं की बात हो रही है तो चलो अभी तो मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा गाना सुनवाने जा रही हूँ, वैसे हम बताते भी नहीं है, लेकिन कुछ इसी से संबंधित है ना?
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी, पैराफिन जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सखियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब निधि बताएंगी कि आगे कार्यक्रम में क्या है। निधि,
7: तो बहनों, कार्यक्रम को हम अब आगे बढ़ाते हुए पेश कर रहे हैं भेंट वार्ता, और आज का हमारा विषय है डिप्रेशन का शिकार होती महिलाएं। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओमी सिंह, और इनसे बातें कर रही हैं कुमारी खुशबू। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
8: वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर विषय बन गया है, और महिलाओं में डिप्रेशन या अवसाद की समस्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार, कार्यस्थल, सामाजिक अपेक्षाओं तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास में अनेक महिलाएं मानसिक तनाव का सामना करती हैं। यदि यह तनाव लंबे समय तक बने रहे तो यह अवसाद का रूप ले सकता है। डिप्रेशन का शिकार होती महिलाएं, आज इसी विषय पर हमसे बातें कर रही हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर ओमी सिंह। ओमी जी, आपका हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
9: धन्यवाद खुशबू जी, आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे बुलाया है अपने कार्यक्रम में, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ।
8: ओमी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में महिलाओं में डिप्रेशन के बढ़ते मामलों के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
9: महिलाओं में डिप्रेशन के बढ़ते मामले, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा है। और आप अगर कारणों के बारे में खुशबू जी पूछ रही हैं, तो मैं आपको एक जो सबसे प्रमुख कारण हमें दिखता है वो है संयुक्त परिवार का विघटन और एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का समाज में अस्तित्व में आना। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके ऑफ कोर्स कई रीजन है, कई कारण है, पर इसकी वजह से ये जो अकेलापन आ गया है ये एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो एक स्टूडेंट है, 18-20 साल की लड़की है, या 28-30 साल की हाउसवाइफ है, या एक वर्किंग फीमेल है, किसी भी एज ग्रुप की महिला है, वो अपनी जगह पर अकेली ही जूझ रही है अपनी समस्याओं से
8: जी।
9: दूसरा एक कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर, यानी अगर वो एक गृहिणी है तो भी उस पे पहले के जैसा, पहले क्या था, गृहिणियां अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे को कोई और पढ़ा रहा है, गृहिणी अपने काम में लगी है घर के काम में तो घर के बाकी मेंबर हैं वो बच्चों को कोई नहला दे रहे हैं, कोई उन्हें स्कूल पहुंचा दे रहे हैं, कोचिंग पहुंचा दे रहे हैं, तो उनपे आज के समय में उनपे प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, उनका मल्टीपल रोल हो गया, बहुत सारे कर्तव्यों को, दायित्वों को, भूमिकाओं को वो अकेले निभा रही है।
6: जी, आज हम देखते हैं कि महिलाएं घरेलू और कार्यस्थल पर दोनों जगह व्यस्त है और अपनी भूमिका निभा रही है, तो ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
9: निसंदेह बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप एक महिला को देखिए जो घर भी देख रही है और अपना वर्क स्पेस यानी अपना कार्यस्थल सुबह उठने से लेकर रात वापस सोने तक में उसकी जो डे टू डे की लाइफ है वो जटिलताओं से भरी हुई है, वो पहले वाली सादगी नहीं रही, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई है कि वो सुबह उठते सोचती है कि आज खाने में क्या बनाना है, घर में सब्जी है या नहीं। अगर उसने हाउस हेल्प लिया भी है कि कोई आ रही है उसे मदद करने के लिए घर में, तो उसके लिए पूरी तैयारी है या नहीं, बच्चे को खाने में क्या पसंद है, घर के जो वृद्ध लोग हैं जिन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनकी दवाइयां आई है या नहीं, उन्हें समय पे खाना कम तेल मसाला वाला मिलना चाहिए। फिर वो अपने कार्यस्थल का भी सोचती है कि मुझे वक्त पर पहुंचना है, मेरे इतने आज वहां असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, ये भी मुझे करना है। मतलब वो मल्टीटास्किंग में सुबह से लेकर रात तक कभी वो थॉटलेस नहीं रहती, वो रिलैक्स रहे, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट खुशबू जी उसके दिमाग में चलता ही रहता है राउंड द क्लॉक। इवन अगर वो बेड पे चली गई फिर भी वो सोचती है, अरे मैंने तो दही नहीं जमाया, मैंने राजमा नहीं डाला कल के लिए।
6: जी, ये आपने बहुत सही कहा ओमी जी, महिलाएं निरंतर व्यस्त है चाहे वो घर हो या बाहर, यहाँ तक कि जब भी वो सोने जाती हैं तब भी उन्हें अनेक काम याद आते हैं, तो ऐसे में उनपे बहुत सारा मानसिक तनाव होता है। तो हम किस तरह से डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण को पहचान सकते हैं और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, आप हमें बताएं।
9: देखिए, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि कोई भी महिला है, वो 18 साल से लेकर के 48 साल है, मेनोपॉज के स्टेज में कहीं भी है, वो एक परिवार के अंदर है। हाँ, परिवार में जब रिलेशनशिप में यानी रिश्तों के बीच में कुछ दरार आना, कुछ परेशानी होना, कुछ खटास आना, ये चीजें चलती ही रहती हर एक परिवार में, और इस जगह उनका चुप हो जाना या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाना या वो अपने इंटरेस्ट को अपनी रुचियों में अब रुचि नहीं ले रही है, जो उनके शौक हुआ करते थे वो छोड़ रही है, वो भविष्य को लेकर के बिल्कुल ब्लिक फ्यूचर हम लोग कहते हैं कि उन्हें कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा अपने जीवन का, उनकी नींद गड़बड़ जा रही है, या तो वो बहुत ज्यादा सो रही है या बिल्कुल नहीं सो रही है, 2-4 घंटे ही सो पा रही है, उन्हें खाने में रुचि नहीं रही, उन्हें शरीर में कई जगह दर्द हो रहा है, सिर में दर्द बना रहता है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पिंपल्स एंड ऑल, बहुत तरह के रैशेस आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, याददाश्त कमजोर हो रहा है, तो ये डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
6: जी, आपने शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया, तो इनसे उबरने में परिवार और समाज किस तरह से मदद कर सकता है एक महिला को?
9: समाज और परिवार से सबसे पहले, समाज की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई एक परिवार है, तो उस परिवार के बाकी सदस्यों का बहुत अलर्ट रहना, अवेयर रहना, उन्हें समझना, ये नहीं कहना कि तुम करती ही क्या हो दिन भर घर में रहती हो। तो इवन आज के डेट में बच्चे बोल देते हैं कि माँ तुम तो हाउसवाइफ हो, ये माहौल नहीं बनाएं, बताएं कि यही घर की धुरी है, इसकी वजह से घर चल रहा है। तो परिवार सबसे पहले अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स को पहचाने, घर वाले नहीं पहचान पा रहे, रिश्तेदार पड़ोसी वो बोले तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो, या तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी।
6: जी,
9: वो उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बने, उन्हें जज नहीं करें, और अगर लगे कि ये बहुत ज्यादा बात बढ़ रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई कलंक की बात नहीं है, बीमार पड़ना कोई भी बीमार पड़ सकता है खुशबू जी, आप भी मैं भी।
6: जी,
9: विशेषज्ञ के पास जाएं
6: अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो महिलाओं को तुरंत संपर्क करना चाहिए। महिलाओं का जीवन कई अवस्थाओं से गुजरता है और उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं, तो क्या हार्मोनल बदलाव या गर्भावस्था या मेनोपॉज भी महिलाओं में अवसाद का कारण बन सकते हैं?
9: बिल्कुल सही बात आपने उठाया, ये जो आपने कुछ चेंजेस बताया, हार्मोनल चेंजेस, जिसमें एक है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले बच्चियों का चिड़चिड़ाना, सैडनेस रहना, कंटिन्यूअस एंजाइटी में रहना, ये डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन है जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं मूड। तो ऐसे में परिवार का समझना कि ये अभी अपने जीवन के उस दौर से गुजर रही है जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी इसका ही एक पार्ट है जो बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद ड्रॉप हो जाता है एस्ट्रोजन में और प्रोजेस्टेरॉन में। अगर ये एक वीक तक रहा तो वी कॉल इट बेबी ब्लूज, और ये विद इन अ वीक ठीक हो जाना चाहिए। पर अभी मैं अपने क्लिनिक में देख रही हूँ एक केस, वो खुद एक डेंटल डॉक्टर है और बेबी के होने के 6 मंथ्स बाद भी सी इज ऑलवेज वरीड कि मेरी बच्ची को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। तो ये अब बहुत आगे बढ़ गया है ये हार्मोनल चेंज, और ये उनके लिए अब एक सीवियर

0: डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो ऐसे में हम दवाइयाँ, थेरेपी, काउंसलिंग सबकी मदद ले करते हैं और पेशेंट को बाहर निकालते हैं समस्या से।
1: तो क्या हम डिप्रेशन को केवल एक मानसिक कमजोरी मान सकते हैं या ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या है?
0: पहली बात है, मानसिक कमजोरी शब्द ही अपने आप में एक गलत शब्द है। ये कमजोरी है ही नहीं। अगर हमें टाइफाइड हो गया, हमें वायरल फीवर हो गया, तो हम क्या कहते हैं? शारीरिक कमजोरी है, इन्फेक्शन हो गया, हम ये कहते हैं ना। और इन्फेक्शन तो साल में कई बार होता है, हर साल इन्फेक्ट होता है। सेम वे हमारा मन भी कई बार उदास होता है, डाउनफॉल में जाता है, हम बहुत दुखी होते हैं। तो ये मानसिक कमजोरी तो खुशबू जी कतई नहीं है। हाँ, ये एक इमोशनल ड्रॉप है, इमोशनल फॉल डाउन है, जिसको समझना है। और ये अगर समय पे डायग्नोज नहीं किया जाए, समय पे ट्रीट नहीं किया जाए, तो इसमें को मॉर्बिडिटी आने के चांसेस है। मतलब एक बीमारी के साथ साथ दो तीन बीमारियां और जुड़ती चली जाती हैं। तो ये हमेशा अच्छा है कि हम जितना जल्दी इसको डायग्नोज करें और इसके ट्रीटमेंट में जाएं।
1: जी ओमी जी, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं को तनाव और अवसाद से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में किन बातों को शामिल करना चाहिए ताकि वो इससे बची रहें।
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका खुशबू जी, इतना अच्छा सवाल है कि मैं चाहूंगी जितनी महिलाएं हमें सुन रही हैं वो बहुत ध्यान से सुने और इस चीज को समझे कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि अकेलापन है, काम का प्रेशर है, परिवार वालों का ओवर एक्सपेक्टेशन है, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपनी सारी महिलाओं, दोस्तों को, बहनों को बताना चाहूंगी कि ये सब चलते रहेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद जो किया जाता है कि अब लड़की हो, माँ हो, बहन हो, तुम्हें ही समझना है, देखना है, ये सामाजिक संरचना है हमारी, हमें इसी में रहना है और इसी में काम करना है। तो जैसा भी उन्होंने कहा कि क्या करें कि इससे बच पाए, तो अपनी दिनचर्या को बहुत डिसिप्लिन में रखें। आप एकदम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी कंपलसरी करें, अपने आवश्यक करें अपने सुबह के रूटीन में। ठीक है, आपको सुबह खाना बनाना है, सबको रेडी करना है, अपना भी टिफिन पैक करना है, स्टिल आई विल टेल कि आप अपने लिए जरूर वक्त निकालें, आधे घंटे का भी। खुशबू जी, एक रिसर्च अभी बताता है कि 5 मिनट का एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं अपने जीवन में, तो वो आपके जीवन का कई साल एड ऑन कर देता है, लाइफ बढ़ाता है वो आपकी।
1: जी।
0: तो आप अपनी हॉबी पर टाइम दें, अपने डाइट पे टाइम दें। आप ज्यादा फल, हरी सब्जियां, जिसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जिसमें ज्यादा जल हो, मिनरल्स हो, ऐसी चीजें जरूर रोज खाएं। समय समय पर डीप ब्रीदिंग करें। जब ओवरथिंक होता है तो उस लूप से बाहर आए, ओवरथिंक नहीं करें। समस्याएं आएंगी जाएंगी, लाइफ है वो परमानेंट है, जीवन सदा के लिए है और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये कढ़ाई बुनाई आजकल क्या हो रहा है खुशबू जी, लोग कहते हैं कि क्या ये कर रही हो तुम, इतना मेहनत करती हो, ये सब बाजार में मिलता है, बरी, पापड़, अचार, ये कैसे महिलाएं बनाया करती थी। ये सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, ये अचीवमेंट है छोटे छोटे जो आपको हैप्पी न्यूरोकेमिकल का सिक्रेट कराते हैं, आपको एवरी डे का हैप्पीनेस देते हैं, क्योंकि जीवन छोटी छोटी खुशियों पर ही चलती है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही ओमी जी, और हमें उन खुशियों पे ध्यान देना चाहिए। चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समाज क्या कदम उठा सकता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। समाज क्या कदम उठा सकता है? समाज मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारे संस्थान जहाँ हम जाते आते हैं, कोई भी महिला कहीं भी, आप की ही बात नहीं है, आपके रिश्तेदार में, आपके पास पड़ोस में समस्या में दिख रही है, तो पहले उन्हें जाए, उनसे बात करे, कनेक्टेड फील कराए उन्हें, उन्हें अकेला नहीं फील करने दे, उन्हें बोले कि हम हैं यहाँ मदद करने के लिए। मैंने सुना है डिप्रेशन के बारे में, और खुशबू जी वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एशिया के दो बड़े इंस्टीट्यूट है, CIP और रिन पास रांची में, तो हम वहां भी मदद ले सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके घर वालों को अवेयर करा सकते हैं। कई बार मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, 20-22 साल के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की, कि वो बोल रहा है कि अगर एग्जाम नहीं निकला ना मैम तो मैं कुछ कर लूंगा। तो ये बातें जल्दी से जल्दी किसी को बताएं, किसी के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि जीना ही बेकार है अगर ये सफलता नहीं मिली तो, क्योंकि मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं।
1: जी,
0: तो समाज को अवेयर होकर के जागरूकता अभियान, न्यूज़पेपर, रेडियो, बहुत माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें फैलाना है, सामने आना है, मदद करना है और सबको विशेषज्ञ तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना है।
1: जी सखियों, ये आवश्यक है कि हम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने और ये समझें कि अवसाद केवल मानसिक कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका अगर सही समय पर उपचार हो और परिवार का सहयोग हो तो इसका समाधान संभव है। स्वस्थ और खुशहाल महिलाएं ही स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकती हैं और स्वस्थ समाज की नींव भी होती हैं। डॉक्टर ओमी जी, आप हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आई, हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुशबू जी कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, डिप्रेशन का शिकार होती महिलाएं, और भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर ओमी सिंह। इनसे बातें की थी कुमारी खुशबू ने, और खुशबू अब बातों बातों में वक्त हो चला है
3: बिल्कुल
2: बहनों से विदा लेने का। हम बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। तो अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखियों निधि और
3: खुशबू को। नमस्कार।
4: लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे भाग मिल्खा भाग फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें थी जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की।

0: अभी आप सुन रहे थे रिफ्यूजी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी अनु मलिक ने, आवाज़ें थीं सोनू निगम और अलका याग्निक की। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सूर्यवंशम से कुमार शानू और अनुराधा पोटवाल की आवाजों में, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत और आखिरी गीत पीके फिल्म से स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत दिया था, संगीत दिया है संतरू मोइत्रा ने, आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर

0: rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in the Group K match. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला करारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी ने हाथिरकी ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज। और संताल दौरे के दूसरे दिन साहिबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को अब से थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस विशेष समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। समारोह के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जैसे पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को खारिज कर डेस्क थपथपाकर जश्न मनाया था, जिसका महिलाओं ने चुनावों में करारा जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित इस ऐतिहासिक कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदला है।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण देने की जो बात थी, जो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उनको पता चल गया कि महिलाएं सब बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जब ये बिल गिरा तो मेज थपथपाकर उन्होंने खुशियां मनाई। तो बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में करारा जवाब उन्होंने दिया है और महिलाओं का उसका अधिकार मिले। कई दशक से ये बिल आ रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मूर्त रूप दिया है और आने वाले समय में उनको पूरा अधिकार मिले, इसके लिए सहयोग करें।
1: राज्य में ठोस कचरे से बिजली उत्पादन की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। शहर का कचरा लोगों के लिए परेशानी नहीं बल्कि बिजली का एक नया और पर्यावरण अनुकूल स्रोत बनेगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के जरिए प्रतिदिन ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति होगी।
3: सिंगल यूज प्लास्टिक्स हम बिजली उत्पादन कैसे करें, उसके लिए हम एक विजन प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। एकाध दो स्टेटों में इस तरह की मॉडल शुरुआत हुई है। जिन स्टेटों पर इस तरह का मॉडल तैयार करके प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उसका हम अवलोकन करने की, राज्य में भी हम लोग इस तरह का एक दो प्लांट लगाएंगे ताकि कचरा का कचरा प्रबंधन भी हो जाए और बिजली भी हम उससे ले पाए।
1: इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केवल घोषणाएं करने से धरातल पर काम नहीं होता और पूर्व की कई कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। श्री शाह ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन पहले शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को सुधारे, क्योंकि कचरे का सही उठाव न होने से जनता त्रस्त है।
4: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का स्कीम था, वो करप्शन के भेंट चढ़ गया। छोटे छोटे नगर परिषद आप जाइए या नगर निगम जाइए, वहाँ पर आपको एक ही कहानी मिलेगी, या तो जमीन नहीं मिल रही है, और अगर जमीन मिल भी गई तो वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्लांट है वो कई सालों से नहीं लगा। अन्य योजनाओं की तरह यह भी करप्शन के भेंट चढ़ेगा।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद के बरवाड्डा में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार की हार के लिए भाजपा पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में 200 से अधिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लाया गया है और जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार से राज्य के किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की। केंद्रीय कृषि

0: एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने टिड्डी हमले के खतरे से निपटने के लिए राज्य की सतर्कता और आकस्मिक कार्य योजना की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में नामांकनों में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए झारखंड सीआईडी की टीम अस्पताल पहुंची है। सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिम्स प्रबंधन से मुलाकात कर पूर्व में हुए एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
1: जांच का आदेश दिया था राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जो यूजी और पीजी एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, उसमें कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेज दे दिया है। तो उसी के तहत हमने जाँच का आदेश दिया था और 3 संसद मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर एक्चुअली जाँच करो।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन आज साहेबगंज के सीमावर्ती प्रखंड बरहरवा का दौरा किया। उन्होंने प्लस टू उच्च विद्यालय में बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर अंतर्गत सोन पोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक पुराना मोर्टार शेल मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही है। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते की मदद से इस भारी विस्फोटक को सुरक्षित कर दिया है। पुलिस के अनुसार सेना की विशेषज्ञ टीम की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का डुमरी तिलैया अब एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा। ये मिठाई केसरिया कलाकंद है जो जीआई टैग पाने वाला राज्य का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है। 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी। इस उपलब्धि से स्थानीय व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उड़ान मिलेगी।
2: 60 साल पहले हम लोग पाकिस्तान से जो डिवाइड हुआ उसके बाद में यहाँ के बसे हम लोग तिलैया में मिठाई की दुकान खोली और सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। इतना फेमस हुआ कि फॉरेन तक गया। फादर का ये प्रोडक्ट है, जीआई टैगिंग हमको मिल रही है, इसका सुन के बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
0: आज दोपहर के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 603 अंक बढ़कर 76,804 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षित और सुगम यात्रा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत और नए सुरक्षा केंद्रों की स्थापना से नागरिक सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला खरारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज। और संताल दौरे के दूसरे दिन साहेबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकार है सिंधेश्वरी देवी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र और मितारी सिंह की आवाजों में चंद गजलें।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902 और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2000 क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवास
3: मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गा

0: भगवती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षाराने मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मिडी में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है। आपका पसंदीदा कार्यक्रम जय भारती, जहां हम करते हैं सलाम उन वीर जवानों को जो दिन रात हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारे देश के सैनिक बर्फीली पहाड़ियों, तपते रेगिस्तानों और घने जंगलों में डटे रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, देश की रक्षा और देशवासियों की खुशहाली। भारतीय सेना का हर जवान अपने दिल में तिरंगे की शान और देशभक्ति की आग लेकर चलता है। उनका साहस, त्याग और समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जय भारती। यह कार्यक्रम समर्पित है उन वीर जवानों को जो अपनी खुशियों के वो पीछे छोड़कर देश की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहते हैं। जब कोई सैनिक सरहद पर होता है तो उसके दिल में देश के साथ साथ अपने परिवार और अपने प्यार की यादें भी होती हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस विशेष समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
2: आज लगभग 262 लोग नियुक्त हुए हैं और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा, जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। सरकार आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है।
1: झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी समावेशी बनाने के लिए बीएलओ 2 की भूमिका अहम और अपेक्षित है।
3: पूरा झारखंड में सभी BLA2 राजनीतिक दल के द्वारा वो नियुक्ति किया हुआ पदाधिकारी उनका साथ में बैठक हो रही है। उसी बैठक में आपका वो आने वाली चल रही है वो सोशल SAR के बारे में उनका जानकारी दिया जा रहा है, साथ में उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा है ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं।
1: देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नीति आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। बहुचर्चित बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी की विशेष अदालत ने आज 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने लेखा शाखा के SSI अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन तथा 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। राज्य में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इसी कड़ी में पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में जिला बल और IRB के जवानों ने दंगारोधी उपकरणों के साथ विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान भीड़ नियंत्रण, अश्रु गैस और वाटर कैनन के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और आम जनता के बीच विश्वास बहाली के लिए जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की है।
4: मुहर्रम का पर्व है, पुलिस शासन है, शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है फोर्सेस का वो किया गया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं असामाजिक तत्वों को कि यदि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हम लोग जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।
1: धनबाद में ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद जिला ओलंपिक संघ द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान के तहत संजीवियर्स इंटरनेशनल स्कूल परिसर में 1 दर्जन फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। विद्यालय के प्राचार्य प्राचार्य इंद्रनाथ सिन्हा और संघ के महासचिव रंजीत केशरी ने छात्रों को पौधारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ तथा झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के तहत आज बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम परिसर में खेल उत्सव का

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी

0: लगता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? The new tender leaves spurting out from the branches, like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल दासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी, स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
2: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
5: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
5: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूं।
5: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
6: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
6: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
3: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
4: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
4: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
4: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
4: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
4: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
2: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थी, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
0: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज का पहला गीत हमने लिया है सूर्यवंशम फिल्म से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। आवाजें हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य और आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे 1 2 का 4 फिल्म से ये गीत। आवाज़ें थी सोनू निगम और लता मंगेशकर की, धुन बनाई थी ए आर रहमान ने। आइए अब सुनते हैं चलते चलते फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम रांची मेलोडीज का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिले में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए बीएलओ 2 की भूमिका अहम और अपेक्षित है। देश के युवा नेतृत्व

स्तर काफी नीचे जा चुका है। जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झार जल पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है बढ़ते कदम। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्रा। पिछले कार्यक्रम में हमने नशा मुक्त झारखंड अभियान पे बात की, हमने अलग अलग युवाओं से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आज ये नशे का जाल कैसे हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। कार्यक्रम के आज के अंक में हम फिर से नशा पे ही बात करेंगे। हम बात उस जिले की करेंगे जहां नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार के प्रयासों से, जिला प्रशासन के कोशिशों से वहां पे भी एक बदलाव आया है। और जब हम एक अभियान की बात करते हैं, जब हम एक नई शुरुआत की बात करते हैं, तो ये कितना फर्क लाता है। जिस तरीके से 15 जून से 26 जून तक ये अभियान चल रहा है नशा मुक्त झारखंड का, वो कितना एक बदलाव लाता है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम जिला में ये जो नशे की समस्या है, ये जो एक नशे का जाल है, क्योंकि वो एक बॉर्डर इलाका है तो वहां पे ये समस्या ज्यादा होती है, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे वो आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे इस तरह के अभियान से वहां पे एक बदलाव आ रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनसे बात करने से पहले मैं उन अपनी जिम्मेदारियों की भी हम लोग बात करें जहां हमारी और आपकी एक भूमिका होती है। जब समाज में नशा जैसे दीमक जो धीरे धीरे हमें बर्बाद करते जाता है, हमारी सोच को खत्म करता है, हमारे में ऊर्जा नहीं रहने देता और हम सिर्फ अपनी जिंदगी में एक अंधेरेपन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे कैसे रोकने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ दबाव के नाम पे आकर, हम किसी एक उदाहरण को लेकर हम नशे को अपना साथी नहीं बना सकते हैं। नशा सिर्फ हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है, नशा कभी भी हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है, नशा कभी भी हमें मुस्कुराहट नहीं देता है, नशा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देता है, हार देता है और आपको हर कदम पे वो तोड़ता जाता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता जाता है। इसे हमें समझना है, इस विषय को हमें एक आंदोलन की तरह लेना चाहिए। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन, हम उनसे बात करते हैं। राजीव रंजन सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: राजीव सर। शुरुआत, क्योंकि एक ऐसे विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में है जो हमारे लिए चिंता

0: ये भी है, और आज वो समय आ गया है जब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे नशे को रोक सकते हैं, हम कैसे समाज में ये जो जहर फैल रहा है उस जहर को फैलने से रोक सकते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि जब झारखंड सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, और आज आपसे बात करने का उद्देश्य भी यही है कि जो ये 15 जून से लेके 26 जून तक का ये अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। सर, सबसे पहले क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में बात करने का उद्देश्य कि आपके लिए विशेष एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे आप इसे देखते हैं सर?
1: हाँ, ये तो नशा जो है समाज में इस तरह जहर की तरह घुल रहा है कि वो सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंतनीय विषय बनते जा रहा है। सरकार ने अभी इसी एक महीने में इसलिए एक अभियान ऐसा चलाया है कि लोगों को कैसे हम नशे से दूर रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नशा व्यक्ति के न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी नुकसान पहुंचाता है।
0: जी
1: तो इसीलिए इस पे ये अभियान जो है, हम लोग इसको चलाकर ऐसा प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक करें, उनमें जागरूकता लाएं।
0: राजीव सर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हम तो जब हम चीजों को अपने समाज में बदलते देखते हैं, हम जब परिवर्तन परिवर्तन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है। लेकिन बात जब हम नशे की करते हैं तो विशेषकर जो आज हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे यूथ हैं, आपको क्या लगता है क्या ये वजह रह रही है कि जो हमारे यूथ हैं वो नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं?
1: ये इसका सबसे मुख्य वजह जो मुझे लगता है वो है कि बहुत ही मानसिक तनाव में बच्चे आजकल हैं। वो इतना अधिक कंपटीशन है उनका उनका हर फील्ड में, जिस किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत अधिक कंपटीशन के दौर में जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उनपे प्रेशर, मानसिक दबाव है। वो दबाव घर पे भी है, बाहर भी है, मतलब हर जगह उनपे एक दबाव बना हुआ है। ऐसे में ही होता है कि थोड़ी संगति जो हम लोग बोलते हैं खराब हो जाती है उनकी, कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं। तो छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है, बच्चे सही गलत का बहुत पहचान नहीं कर पाते हैं और क्षणिक सुख के लिए कभी कभी नशा वो लेना शुरू कर देते हैं। और नशा एक ऐसा है वो फिर उनको अपना एडिक्ट बना देता है। तो ये कारण एक हो सकता है नशे का, इतने समाज में इसकी पैठ बनाने का।
0: तो सर आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जब हम एक उपायुक्त की बात करते हैं हम कहते हैं कि जिले की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, और एक बहुत बड़े एग्जाम से, देश देश के सबसे बड़े एग्जाम से आप निकल कर आते हैं, यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो आप उतनी कठिन परीक्षा को पास करते हैं, आपने अपने किताबों के साथ इतना वक्त बिताया होता है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर जब आप युवाओं से बात करते हैं या वो ऐसे कुछ लोग जो बातें करते हैं जब इस विषय पे, तो एक उदाहरण आता है कि पढ़ाई का प्रेशर इतना हो जाता है कि वो हैंडल कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और फिर बच्चे जो है मूव कर जाते हैं, उनका जो दिमागी सोच जो होती है वो नशे की तरफ चली जाती है, उन्हें लगता है कि इससे वो बेहतर कुछ कर पा रहे हैं। सो ये कहीं से रिलेट करता है क्या? क्या क्या एजुकेशन का प्रेशर आज की तारीख में इतना बढ़ रहा है या लोग इसका सहारा ले रहे हैं?
1: नहीं, एजुकेशन का प्रेशर भी है और भी, मतलब कई तरह के प्रेशर है, एजुकेशन भी उसमें से एक है। आज चूंकि इतनी बढ़ती जनसंख्या हमारी है और उसमें कम्पीट करके हर व्यक्ति चाहता है कि आगे वो बढ़े, पैसा उसके पास हो, एक ऐसे पैसे की चाह भी एक ऐसे आ रही है। तो ये सब तरह का प्रेशर रहता है। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बच्चे हमारे जो है, पेरेंट्स जो सोच रखे हैं उसको बच्चे कर सकें, तो ये सब भी एक प्रेशर का हिस्सा होता है। और ये कारण बनता है कि वो नशे के आदी हो जाते हैं। और नशा तो आप जानते ही हैं कि कैसे अपने जाल में जकड़ लेता है, और एडिक्शन उसका सबसे प्रमुख है, वो एडिक्शन कर देता है बच्चों में, फिर उससे निकलने में उनको कठिनाई होती है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि मतलब कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी हो जा रही हैं,
1: हाँ, एकदम सही आप समझ रहे हैं।
0: कि लोग को थोड़ा एजुकेशन का भी प्रेशर आ रहा है, थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर आ रहा है। सर
1: और दूसरा, एक नशा का एक ये भी पहलू है कि वो कुछ स्टेटस सिंबल भी बनते जा रहा है हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ पहले ऐसा माना जाता था कि नशा नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग मतलब एक सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं मानते थे। शराब पीना, जैसे बताते हैं आपको, उदाहरण हम बता रहे हैं, तो वो एक अच्छा नहीं माना जाता था, सामाजिक रूप से उसको हम सही नहीं मानते थे। और ऐसा अगर कोई मतलब ड्रिंक करता भी था तो प्रयास करता था कि बड़े लोग के सामने वो ना जाए, ऐसा सामाजिक लिहाज ऐसा रखा जाता था। तो ये देखिएगा, धीरे धीरे अब ये टूट रहा है। यहाँ पे अब लोग मतलब कि घर में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, हम कई ऐसा उदाहरण देख रहे हैं, लड़कियां खूब ड्रिंक कर रही हैं, तो ये एक ऐसा ऐसा शो ऑफ कल्चर इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा शो ऑफ हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति को देख करके एक ऐसा हो गया है कि इसको लोग मतलब ऐसा मानने लगे हैं कि हम पीते हैं तो अच्छे अच्छे लोग बड़े लोग कहे जाएंगे हम, ये भी एक कारण है,
0: एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है कि नहीं ये तो कूल है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं कि तुम नहीं लेते हो, तुम नशा नहीं करते हो, तो इस तरह के भी सवाल आने लगते हैं।
1: ऐसा है
0: कि ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है सर, कि जो पाश्चात्य संस्कृति की हम बात कर रहे हैं कि फैमिली में पेरेंट्स और बच्चों के बीच का एक गैप भी बनता जा रहा है, जहाँ पे शायद बच्चे पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे रहे जितना समय उनको देना चाहिए, ये भी एक कारण है कि बच्चे इन चीजों के आदि हो जा रहे हैं।
1: हाँ, ये भी समस्या का जड़ इससे भी शुरू होता है, क्योंकि लोग अपने लाइफ में इतने मशगूल हो गए हैं, बच्चे से तो बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन उस अनुसार अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, उनसे बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के बारे में रोज उनसे नहीं पूछते हैं, नहीं जानते हैं, उनके और बाकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन सारी बातों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि स्कूल का फी भर देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग जो है वो जैसे एक पौधे को हम लोग कैसे पानी दे करके सींच करके उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बचपन भी ऐसा ही होता है, ये नहीं होने से बच्चे जो है कहीं किसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनको घर में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो बाहर की दुनिया में उसको खोजने लग जाते हैं, तो नशा जो है इसी इससे भी घुसता है उनके जीवन में।
0: यानी हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। राजीव सर, पूर्वी सिंहभूम जिला की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और जब हम पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करते हैं, यहाँ पर नशे को लेकर और विशेषकर जो निषिद्ध मादक पदार्थ है, जो सरकार की भी एक कोशिश होती है, जैसे हेरोइन हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, डेंड्राइट हो गया, ऐसे चीजों पे कंप्लीटली रोक लगाना है, लोगों को अवेयर करना है, आपके लिए ये बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला में ये परेशानी और जिलों से ज्यादा है।
1: हाँ, सही आप बता रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया हमारा है, दो स्टेट से यहाँ पे मिलता हुआ है, तो ऐसा जो है स्मगल होने का कभी कभी ऐसा हम लोगों को कंप्लेन आता है हम लोगों के पास, तो वो इस पे लगातार यहाँ पे पुलिसिंग करके प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग इस तरह के ड्रग पैडलर हैं और जहाँ से ये शुरू होके जहाँ तक जा रहा है, वो दोनों सोर्स को हम लोग इस पे पकड़ बनाएं अपनी, और उसको हम लोग पकड़े, खोज करें कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है।
0: अभी अभियान चल रहा है सर, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष उनका भी एक सतत प्रयास होता है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि जो निषिद्ध मादक पदार्थ है कैसे उनसे बचना है, तो जब इस अभियान की बात करते हैं, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करूं, कि किस किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं, कैसे आप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, किस तरह का अप्रोच आपका होता है?
1: ये नशा से दूर रखने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो जागरूकता है। लोग जब जागरूक हो जाएंगे कि हाँ ये नशा निषिद्ध मादक पदार्थ जो है वो नहीं लेना है, वो उनके लिए घातक है, तब उसको वो छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सर्वप्रथम ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गोष्ठी वगैरह आयोजित करके ऐसे स्कूल कॉलेजों को इसमें जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारा हाट बाजार लगता है वहाँ भी निषिद्ध मादक पदार्थों के बारे में लोगों को माइकिंग करके, नुक्कड़ नाटक करके, तो मंडली के द्वारा लोगों को में जागरूकता लाई जा रही है कि इसको नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश किया जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह पे अपनी पहुंच बनाई जाए और लोगों में इस बात का संदेश दिया जाए कि सरकार भी चाहती है कि निषिद्ध मादक पदार्थों को अपने जीवन से दूर रखें।
0: कितना एक प्रभाव पड़ता है जब इस तरह के अभियान की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात की जाती है, मैं आप क्योंकि आप तो जिस जगह पे हैं आपको हर चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको पुलिसिंग भी देखना है, आपको मैनेजमेंट भी देखना है, सो क्या एक फर्क पड़ता है जब हम इस तरह का कोई एक अभियान अपने जिले में करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि इससे कितना बदलाव आता है, क्या एक राजीव सर क्या एक फर्क पड़ता है?
1: नहीं, इससे फर्क पड़ता है, लोगों में जब कोई ऐसा कोई अभियान होता है, जब सरकार उसको लेकर आती है, तो हम लोगों को भी मतलब हमारे तो बहुत सारे काम होते हैं, बट जब भी सरकार से इस तरह का कोई डायरेक्शन आता है तो ऑलवेज वो हमारा बहुत प्रायोरिटी में आ जाता है, तो हम लोग अभियान के साथ साथ इन चीजों पे बाद में भी नजर रखते हैं, अभियान के बाद भी नजर रखते हैं, और लोगों को भी लगता है कि

0: चीज को जब गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है तो लोगों को भी एक ऐसा लगता है कि सरकार अब खुद इसको देख रही है, तो इसका बेहतर रिजल्ट आते हैं। हम लोग कई सारा जब भी अभियान चलाया गया है देश में अलग अलग कार्यक्रमों को अलग अलग चीजों को लेकर के, तो परिणाम सब देखे हैं हम लोग कि बेहतर परिणाम उसका रहा है।
1: मैं अब इसके एक दूसरे पहलू को आपसे जानना चाहूंगा राजीव सर, कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको एक अच्छी आदत पकड़नी होगी, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कोई अगर इसके एडिक्शन में आ गया है, कोई युवा इसके जाल में फंस गया है, तो किन चीजों को वो अपनाए?
0: सबसे पहले इसमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो परिवार का, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए नशे को छुड़ाने के लिए। दूसरा, उनके जो भी मित्र हैं, सहयोगी उनके हैं, वो लोग को भी इसमें आगे आना होगा कि उनको कैसे काउंसिलिंग करके नशे से दूर रखें, और साथ ही साथ उनको स्वस्थ जीवन शैली जैसे जीने के लिए खेल इसमें एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण बनता है। योग हम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों से, और उनको उचित एक काउंसिलिंग का जरूरत होता है। जो लोग भी इस तरह के नशे के गंभीर रूप से आदि हो जाते हैं, एक उचित काउंसिलिंग भी उनका जरूरी होता है, तो ये उनको देने से नशे से हम लोग दूर रख पाते हैं, रख सकते हैं उनको।
1: आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां आज भी एक डर होता है कि अगर हम शायद किसी को ये बता दें कि हमारा बच्चा एडिक्टेड है या हमारा बच्चा तो निषिद्ध मादक पदार्थ लेता है, तो शायद उनके स्टेटस पे चोट आ जाएगा, ये भी डर आज भी लोगों के मन में, रैदर देन कि उनको लग कि आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे राजीव सर?
0: ये ऐसा है ना कि हम लोग कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो नशे में पेरेंट्स को यही सोचना चाहिए कि ठीक है, समुचित ध्यान नहीं देने के कारण या बच्चे में ऐसी कुछ कमजोरी थी कि नशे की तरफ झुकाव उसका हो गया, बट अब वापस लाने का समय है, तो उनको आगे बढ़ करके इसको स्वीकार करना चाहिए और बच्चे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए इस काम में, तभी वो नशे से दूर हो पाएंगे।
1: यानी आपको उस दायरे से बाहर आना होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जब आप पूर्वी सिंहभूम जिले की जिम्मेदारी आपने ली, और हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि अब बहुत चीजें बदली हैं, आपके जिले के बच्चे नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे खेल की बात कर ले या फिर अचीवमेंट्स की बात कर ले, और बहुत सारे स्कीम्स भी सरकार की है जो जिले में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। सो एक नजर में जब आप पूर्वी सिंहभूम जिले को देख रहे हैं, कौन कौन सी संभावनाएं आपको अपने जिले में नजर आती
0: है? यहाँ पे तो बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पे जैसे आप खुद ही बताए, तो जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं अच्छे, यहाँ पे खेल के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतर माहौल है, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे है, तो बेसिक जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो इस शहर में पूरे झारखंड का अगर हम कंपेरिजन करें तो काफी अच्छा है, उसमें काफी बेहतर है, और लोग इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट है, लोग यहाँ पे थोड़ा प्रगतिशील विचार को रखते हैं, और ये इस कारण से यहाँ पे बेहतर एक माहौल है, हर चीज का एक अच्छा माहौल है।
1: वो कौन सा सब्जेक्ट है या वो कौन सा क्षेत्र है जिस पे उपायुक्त के तौर पे राजीव सर ज्यादा काम करना वहाँ पे चाहते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पे उस पे काम करना चाहते हैं?
0: यहाँ पे क्या है ना कि दो सेक्टर है, एक शहर है एक गाँव है, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। इस जिला में शहर के लोगों को जो अपनी समस्याएं उनकी होती है, बिजली पानी, ये शहर की समस्या हमेशा बनी रहती है, लेकिन गांव की समस्या इससे थोड़ी अलग होती है, वहां पे उतना शिक्षा का स्तर नहीं है, तो उनका और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, इससे कनेक्टिविटी का कभी प्रॉब्लम होता है, वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को क्रेच की सुविधा नहीं है, तो ये दो तरह का, इसलिए हम लोग दो तरह से बांट के इसको प्लानिंग करते हैं, शहर के लिए क्या चाहिए और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए क्या चाहिए। सिंहभूम जिला में इसी ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं।
1: राजीव सर, बढ़ते कदम कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि नशा मुक्त समाज जो है वो स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज की नींव है, इसीलिए हम सभी नागरिकों को नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।
1: राजीव सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आप शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने बात की पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन से, और सर ने बहुत कुछ हमें बताया किस तरीके से हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है और कैसे समाज में एक बदलाव लाना है, किस तरीके से माँ बाप को, बच्चों को एक दूसरे को समझना है, किस तरीके से समाज में हम इस नशे की जाल से बच सकते हैं, इस नशे की जाल को फैलने से रोक सकते हैं। कहते हैं ना कि हमेशा जो शुरुआत होती है वो खुद से करनी चाहिए। हम हमेशा जब बदलाव की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये बदलाव वहां से शुरू होनी चाहिए, लेकिन जब तक ये वहां खुद से नहीं होगा तब तक उसकी शुरुआत नहीं होगी। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम एक समृद्ध झारखंड के निर्माण में, खुशहाल झारखंड के निर्माण में आज से शुरुआत करेंगे। हम संकल्प लेंगे कि हम नशे को ना कहेंगे, हम जिंदगी को हाँ कहेंगे। हम संकल्प लेंगे कि जो भी इस जाल में फंसा है उसे इस भंवर से निकालने में हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि आपके एक सकारात्मक सोच की जरूरत है, आपके एक बढ़ते कदम की जरूरत है, और जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे आपको अपनी जिंदगी नजर आएगी। और अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने होती हैं, सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिनसे जुड़कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाएं जो आपको एक शुरुआत देती हैं, बस सकारात्मक सोच होनी चाहिए और आप अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ही केंद्र से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जहां आप अपना स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ हैं तो फिर नशा क्यों? तो बस आज हमें ठानना है कि बहुत हो गया, अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर खुशियों को दौड़ने देंगे, अपने लक्ष्य को दौड़ने देंगे, अपने खेल को दौड़ने देंगे, अपने शिक्षा को दौड़ने देंगे। हम जीतेंगे, हम मुस्कुराएंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में नशे को अपना साथी नहीं बनाएंगे। कार्यक्रम बढ़ते कदम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े चल रहा हूं इस खूबसूरत से गाने के साथ। नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति स्वर कमलेश कुमार मिश्र की थी और प्रस्तुति प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें।

अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। संध्या 5 बजे, संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, इतिहास में आज का दिन, रोचक तथ्य, समसामयिकी और आपको जानकारी दी जाएगी मौजूदा भू राजनीति और भारत की वर्तमान विदेश नीति के संबंध में। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय है महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक सशक्तिकरण का एक दशक। आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे आयुष्मान भारत, सुरक्षा भी सम्मान भी।

संध्या 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम, क्षमा करेंगे, संध्या 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। खेती बाड़ी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा टपक सिंचाई का महत्व, साथ ही आपको जैव कीटनाशकों द्वारा सब्जी एवं फलों में कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर प्रीति प्रिय। हमारी दुनिया कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी सफलता के लिए मेहनत जरूरी, साथ ही आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, डिजिटल शिक्षा आज की आवश्यकता, वार्ताकार हैं आंचल कुमारी। साथ 7:15 पर आदिवासी अखरा, आज का यह कार्यक्रम मुंडारी भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, नशा से दूर रहें लोग, साथ ही आप सुनेंगे कविता और कहानी। साथ 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा में। 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे News@9, 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट से गिटार पर राग बागेश्री में अलाप और गत, साथ ही आप सुन सकेंगे गिटार पर ही राग मिश्र गारा में धुन। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आशिकी में कुमार शानू को। गीत रचना मदन पाल की है, संगीत नदीम श्रवण का।

इस समय आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू को ही फिल्म दीवाना में। गीत रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है साजन।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में मेडिकल सीट अलॉटमेंट और नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितता मामले में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की टीम ने आज रिम्स में डीन कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच शुरू की। सीआईडी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पिछले शैक्षणिक सत्र में हुए दखलों से संबंधित शिकायतों के आधार पर की जा रही है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में माराफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज बोकारो समाहरणालय परिसर से सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद के तहत बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के चयनित 16 दिव्यांग लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने करवाटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला

में मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूं छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका अलका याग्निक के गाए कुछ गीत। 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी जैविक कीटनाशी एवं लाभ के बारे में। मनोरंजन होगा होलो गीत से सिनेमाए आल्डा और साथियों के स्वर में। इसके अलावा आप भेंट वार्ता सुनेंगे, कुरमाली लोकगीत सुनेंगे मालवती देवी और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 पुनः आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 से 6:30 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अकड़ा, जिसमें जानकारी दी जाएगी वात्सल्य मिशन योजना के बारे में। चर्चा होगा भोजन हमारे लिए आवश्यक है, हेरो दुरंग आप सुनेंगे फूलमती पाटपिंगुआ और साथियों के स्वर में। इसके अलावा भेंट वार्ता या नाटक सुनेंगे। इसके बाद आहिंदी लोकगीत सुनेंगे वीर सिंह बिरुली और साथियों के स्वर में। 6:30 पर आप सुनेंगे बहनों को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आज कल।

श्रोताओं, 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। 8:45 पर आपको हम ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 11:11 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज पेश कर रहे हैं एक ही गायिका अलका याग्निक के गाए कुछ फिल्मी नगमे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये नगमा। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुम, आरजू और तेजाब का गीत अलका याग्निक की आवाज में। इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना एक ही गायिका अलका याग्निक के गाए कुछ गीत। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई बसा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको कुछ ही पलों में सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे जैविक कीटनाशक और उसके लाभ के बारे में। जैविक कीटनाशक प्राकृतिक सामग्री जैसे जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया और खनिज और कुछ खनिजों से प्राप्त पदार्थों से तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग कृषि में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इन्हें रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है। जैविक कीटनाशकों में सबसे ज़्यादा नीम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के तेल के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आज कई बड़ी कंपनियां नीम के तेल से बने उत्पादों की बिक्री कर रही है। किसान भाई बहनों, जीवों एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद होने के कारण जैविक भूमि में अपघटित हो जाते हैं तथा इनका कोई भी अंश अवशेष नहीं रहता है। यही कारण है कि इन्हें पारिस्थितिकीय मित्र के रूप में जाना जाता है। जैविक कीटनाशी

0: पर नागरिकता की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। के रवि कुमार ने बताया कि प्रारूप सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाता शामिल नहीं होंगे। वहीं एएसडीडी सूची 5 अगस्त 2026 को प्रारूप प्रकाशन के दौरान दलों को उपलब्ध कराई जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी।
1: संविधान आर्टिकल 326 में क्लियर दिया हुआ है, आपका भारत का नागरिक 18 उम्र हो चुका है, एक पोलिंग स्टेशन में रहेगा, मतलब उसका नाम रहेगी। बाकी कोई आदमी बाहर का आदमी यहाँ रहता है, मतलब विदेश का कोई आदमी रहता है, लीगली इलीगली रहता है, उसका बारे में कोई मतलब नहीं, उनका नाम सूची में नहीं आया।
0: पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आज एक दिवसीय दौरे के क्रम में कोडरमा में निर्माण

0: स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण, कोडरमा से बरका की डबलिंग भी जो है अब स्वीकृत हो गई है, तो उस पर भी अब कार्य प्रारंभ होगा। इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य हैं, सब एक साथ चल रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो उपलब्ध भी हो जाएंगे देश की सेवा के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड को विकास की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि अजमेर जयपुर रांची के बीच प्रस्तावित अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन से राज्य की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा सुविधा मिलेगी। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में आज रामगढ़ परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभापति श्री राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा रोजगार का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण अधिनियमों का उद्देश्य आम नागरिकों को सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बोकारो जिले में पुलिस तथा झारखंड अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बोकारो स्टील सिटी स्थित कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट सह औचक निरीक्षण किया। कोचिंग संस्थानों के संचालकों को अग्नि सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने, अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील अवस्था में रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां बनाए रखने का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्नाटक से मजदूरी करने गए झारखंड के 18 मजदूरों को प्रशासन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। इन मजदूरों को पिछले कई महीनों से जबरन काम कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके खिलाफ बंधुआ मजदूरी और श्रम कानून के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
2: कोई अनजान व्यक्ति के साथ ये चले गए कर्नाटक का, तो वहाँ एक बंधुआ मजदूर के तरह इनको रखा गया। वहाँ ये 1-1.5 साल तक काम किए और वहाँ का जो ओनर था वो इन लोगों को पैसा वगैरह कुछ देता नहीं था, सिर्फ खाने पीने का देता था। तो फिर गाँव वाले ने मैंने प्रशासन से वहाँ फिर संपर्क किया, बाद में फिर रेस्क्यू किया गया।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबिरू थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज सारंडा के टाटीबा गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि फरार हुए शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में माराफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा बोकारो जिले के सभी मुहर्रम अखाड़ों, जुलूस मार्ग का सत्यापन सूक्ष्मता से करते हुए बिजली के तार, लटके हुए पेड़, रोड पर व्यवधान डालने वाले अवरोध का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। मौसम। रांची में अब तक लगभग 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा के मुकाबले 13% कम है। सबसे चिंताजनक स्थिति गढ़वा और चतरा जिले की बताई जा रही है, जहां सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, ताकि रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक बच्चे अनुभवी प्रशिक्षकों और रेलवे खिलाड़ियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत

0: सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का लिया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई बारिश। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चतरा जिले में सामूहिक योग अभ्यास के जरिए स्वस्थ शरीर, शांत मन और सशक्त जीवन का संदेश दिया गया। मौके पर सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: आदरणीय मोदी जी ने अपने प्रभाव आभा मंडल से पूरे विश्व को इस योग दिवस से अवगत कराया और आज पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने स्वास्थ्य, किसी भी देश के सफलता का पहला मूल मंत्र होता है स्वास्थ्य, वहाँ के नागरिक रहें, इसलिए हम योग करें स्वस्थ रहें। उन्होंने नारा दिया, योग करो स्वस्थ रहो देश सबल बनाओ।
1: बीते रविवार चतरा जिले के इकलौते परीक्षा केंद्र पर नीट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा में कुल 407 परीक्षार्थी शामिल हुए। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। इधर विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के अध्यक्ष सरयू राय ने चतरा दौरे के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत के दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड और मंदिर प्रबंधन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि
3: तो ये नीतिगत विषय है, इसके बारे में या तो कोर्ट से या सरकार से पहले आग्रह किया जाए कि ये ठीक नहीं है, हमारा मंदिर है, हम लोग एक आप नियम कायदा कानून बना दीजिए, उसके अनुसार जो जिनकी आस्था है वही लोग इस मंदिर को चलाएंगे। सरकार इतना ही करे कि एक समिति बनवा दे यहाँ आस्थावान लोगों की, अपने सरकार दे लेती है मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से, ये उचित नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड सबका देख रेख करे, कहाँ उचित हो रहा है अनुचित हो रहा है इसको देखे, मगर प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय आस्थावान लोगों की होनी चाहिए।
1: बोकारो जोन के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने चतरा में समीक्षा बैठक के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस जनता के बीच बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि
4: चतरा पहुंचने का जो पहला उद्देश्य था

0: था कि अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करना। हमारे पदाधिकारी बहुत अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो अपने पदाधिकारियों से एज ए जूनियर आईजी हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो यहाँ मैं जो अपने हमारे पदाधिकारी हैं जिले के, सारे बड़े पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, तो कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ। वह है, पहला तो है कि जो हमारे थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का है वो व्यवहार अच्छा हो, यानी हमारे थाने में जो पब्लिक आती है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा हो, जो थाने में रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं FIR दर्ज किया जाए, जो पदाधिकारी या पुलिसकर्मी हैं उनका टर्नआउट जो है वो काफी अच्छा हो।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत चतरा जिले में 28, 29 और 30 जून को 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम और ट्रांजिट टीमों का गठन किया गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे राज्य केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आज कल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:17 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मानसून का आगमन हो चुका है। बहुत जोरदार बारिश कहीं हुई है, कहीं छिटपुट बारिश हो रही है और बिजली की गड़गड़ाहट तो काफ़ी तेज है। तो चलिए, ऐसे में कुछ गीत आज आपको सुनवाते हैं बारिश के। तो सबसे पहले सुनिए, फिल्म का नाम है 1942, ए लव स्टोरी का गीत कुमार शानू की आवाज़ में, और साथ में है कविता कृष्णमूर्ति, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम गैलियर लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। संजय बिरुआ, डोचोंग पांड्या, पिंकी पांड्या, चंपाई बिरुआ, बलबीर बिरुआ ग्राम खजूरिया से, राधिका गोप, हेनु कैप्टन, श्रीमती हाटमिनी बिरुआ, राजू बिरुआ, प्रेम प्रकाश बिरुआ भी इसी गांव के हैं। वसुंधरा कॉलेज सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी और मधु, जयश्री देवी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बेताब। शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। गोला बाजार बक्सर से शुद्धानंद आर्य, अभय आनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम सुनाते हैं प्यारा सनगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आपको हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अब अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है गुरु। श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं। अब इस गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गा सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परवड़नी से सी आर कुलकर्णी, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबली पाटिल, राजदीप राजेश, राशेश राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, मुकेश कासलेकर, दिनकर विमल, विशाखा कासलेकर, ये हैं अमरावती महाराष्ट्र से, ग्राम जामठी तहसील वरुट। चलिए इन सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं गुरु फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबियाहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजताफा खान, राउफ भाई, शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमिंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है बाकी। मीत प्रोस मुरारी ठाकुर की आवाजें हैं, गीत लिखा है कुमार ने, संगीत है मीत प्रोस का। तो चलिए इस गीत का आनंद हम सब मिलकर लेते हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
4: पड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर में ना बोले नवा नुकन परिस्थिति रे बोले सब पड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बारी करा आरकी थाना तो जंगल गया है तो कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
6: नाम है रनबला देवी गाँव बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमारे घर बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए।
7: तुम लोग बुरन सिंह तमसोए अनिता तमसोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा मिना या पा मैं रिया तपा मैं रिया वाह बेटा मिटा

0: పట్టణం గుంటూరు కూడా అయాహుండో కొద్దమని కూడా ఇప్పుడు పట్టణ పట్టణతో కితమై కూడా నేను బాగా తొక్కిలో పోలీస్ కులో ఎన్ని లడై చలావతను ముర్రం గుయ్యాంటో జై తర కకో ఉండి కోకో కకో నెలమీ
1: అలింగ్ మునిసురం పేత అపిల్లతన లేంచి జా హురారే మినై రోజు తౌరారే మినై రో బుగిన్ హురాతే సెసన్ కాయ ఉవాగే బిటా ఉరేన్ కా అలి అయాను తుం తేన అపిల్లతన
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేనా।
1: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। माहौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदने, आयुष महतो, गीतेश महतो, संतोषी दीपक संतोष, राहुल अनु तनु भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान और नीलपानी प्रधान। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। ग्राम पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय महली, साजीव महली, बिरसा मुर्मू और कमलेश मुर्मू। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है मोहरा। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें हैं, विजू शाह का संगीत है।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आपको आपका पता बता दें, आप यहाँ अपने पत्र, अपने सुझाव हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो हमारा पता आपने सुना, फिर से बता रही हूँ, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो आशा करती हूँ आज बरसात के गीतों का आनंद आपने अच्छी तरह से लिया और कई जगह बारिश हो भी रही है। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनी कंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रजनी कंधा कार्यक्रम में हम बारिश के ही कुछ गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए, फिल्म का नाम है सर, कुमार शानू की आवाज़ है, कातिल शजय के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं साधु सहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, अनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। ग्राम हारूडी से है तुलसी महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमहनी महतो, संगीता महतो, संतोषी महतो, दीनबंधु महतो। ये ग्राम चांडिल हारूडी से हैं। और खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, भाई एस देहुरी। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं रजनी गंधा कार्यक्रम का ये पहला नगमा। फिल्म का नाम है सर।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंथा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी फरमाइश पर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रयांश ठाकुर। खमारिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार। सदाबहार श्रोता संघ बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलाम, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से ही मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी, समस्त तड़वी परिवार। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंड्री, सुरुमानी मुंड्री, हीरामानी मुंड्री, हिमांती मुंड्री, डोबरो मुंड्री, साजन मुंड्री, सिद्धेश्वर मुंड्री, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, मुकेश कुशल मुंड्री, जानुम सिंह मुंड्री, सिद्धिपो सोना बाबू सोना, एफ एम शिवा मुंड्री। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेत कुमार दामोदर और गौरव पाटिल। इन सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है जान की कसम। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी कंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है मजबूर। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आन्या, अनाया, नेहा सागर, गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी, सुधीर नूतन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सबा शेरे। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से बलविंदर बीरक, चेतन बीरक और मीका बीरक। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है मस्ती। शान और स्नेहा की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं और आनंद राज आनंद का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि विनीत आहूजा, निमित विशाल गगनेजा। दंतरेगी छत्तीसगढ़ से हैं भागवत वर्मा। गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष आनंद। गांव ढलाई केला पोस्ट में पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोई, बिरसा सोई, राज सोई, अनिता सोई, मनीषा सोई, पूना सोई और समस्त सोई परिवार। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मस्ती का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है तक्षक। सुजाता त्रिवेदी की आवाज है। इस गीत को सुनना चाहते हैं जोजो कुड़मा से मनोज गगराई, बसंती गगराई, सोनाली, आयशा, जितेंद्र, पीताम्बर महतो और रचना गगराई। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा, कल्पना महतो, मनमहनी महतो और दीन बंधु महतो। बड़े बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान परी और नबीहा। कुचाई ग्राम इचाहत से गोलाराम लोवादा, लुद्री, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी, बिनचना लोवादा परिवार। ग्राम लोसोदी की से कोमल महतो, पेगी महतो, गोविंद, जीतू, साईमान महतो और परिवार के सभी सदस्य। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद नरंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनेश, अंश, अंशु और मुन्ना। बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, दीतिक कुमार, ये हैं छोटा निमडी चाईबासा से। बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है ताल। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं, एआर रहमान का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। गाँव की तरह सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप।

अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, सरस्वती देवी, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, उमा कुमारी और भारती। मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गोहणकर राहे, श्रीमती सरिता गोहणकर, प्रिंस एकांश गोहणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोहणकर, प्रणीता गोहणकर, आकार हाइट्स भादुरा नागपुर से वैशाली सुरेश गोहणकर, श्वेता सिमित गोहणकर, कुमारी ध्वनि गोहणकर, उपरी लाडला टुकटुक। इन सब की फरमाइश पर चलिए आपको हम सुनवाते हैं फिल्म ताल का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर गीत। बेडी से हुकुम कर्म कर, सुनीता कर्म कर, हार्दिक कर्म कर, प्राची कर्म कर, तनु कर्म कर। रेलवे रोड गजडुन द्वारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। चलिए, सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं इजाजत फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं समय की कमी के कारण पूरा गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। आशा करती हूँ सभी गीत आपको पसंद आए होंगे। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं अब आपको लिए चलते हैं हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार संध्या बस कुछ ही पलों में।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: The Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
5: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्यूर जिले के याजानी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
6: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से,

0: तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार में विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
0: जी जी।
1: और वो नित्य नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। 5वीं जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशन आ रही हैं।
0: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
1: अवश्य। देखिए हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
0: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती है।
0: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हो तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जिससे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं। इसके अलावा रेलवे पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
0: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्टफुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
0: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम हमारा इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक।
0: जी जी।
2: फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, इसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉटपुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देते हैं। वैसे मैं शाहपुर जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
0: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे भी।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी से 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
3: मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
0: बिल्कुल
3: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ, एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू।
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
3: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
0: हाँ
3: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू
0: सोल्यूशन।
3: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सॉल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो, एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
3: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टुडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश दयाल। वंश दयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है। तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
4: तो ये मौका मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल लाइफ में है ना, कि अब तो खुद हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। मम्मी से रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, भूल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट रहते मैं सलाह लेता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपनी समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
4: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
5: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
5: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
5: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को, उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
0: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दे जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
5: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
5: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
6: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
6: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए, धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी, और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। आज महफिल में आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाए कुछ गजल। तो चलिए गजलों का सिलसिला हम शुरू करते हैं।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना पंकज दास के स्वर में चंद गजलें। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, पेश है फिल्म लम्हे का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाय बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है प्यासा सावन। सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौतन की बेटी। अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार की आवाजें हैं, सावन कुमार के बोल हैं, संगीत है वेद पाल का।

श्रोताओं, अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है चालबाज। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।